जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है।

0: सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यह है कि असी अपने आपे की खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साडे वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साडे वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असी बैठे ईमानदारी दे नाल कि असी अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं है, कि असी अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गुआई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नूं लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नूं पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहिंदे हन सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, कहिंदे भी तू कौन है कितों आया है, तेनू इस चीज की खबर है, बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा जो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उत्थे जाके ड्युअलिटी द्वैष मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च इस टपले च इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिदा कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए अते इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिदा है, ते ओ ना हो आपनू नहीं बुझिया कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वह ग्रिस्ती है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाला है, कोई भी चाहे है, जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन
1: काजी मुल्ला होवे शेख,
0: कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, کوئی شیخ ہووے
1: جوگی جنگ میں پگوے پیک
0: کوئی جوگی ہووے کوئی جین مت دا ہووے کوئی پگوے پیک والا ہووے کہندے ہن
1: کو گرہی کرما کی سند
0: چاہے کوئی گرستی ہووے گرہی ہووے جڑا سارے کرم کرم تے نبھاندا ہووے کدے پاٹھ کرا لیا کدے لنگر کرا لیا کدے تیرتھاں تے جائے درشن دیدارے کر آئے اتے باقی دنیاوی ذمہ واریاں بھی ساریاں نبھاندا ہووے لوکاچاری بھی پوری کردا ہووے کو گرہی کرما کی سند سارے کرما نوں پوری طرح ملاندا ہووے کردا ہووے پر کہندے ہن

अगर वो अरदास करदा है तो साहब जी कहंदे ने वो फिर दलाल है तो उहदे भी हाथ वड्डे जाणगे क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया। रब की दरगाह विच सच

इंसान सुचा नहीं हो जाता। ते पंडित ने कहा, महाराज तुहाडी निगाह विच सुचा कौन है? ता गुरु साहब जी कहन लगे, सोचे सही नानका जिन मन वसे असोए, ओ सुचे ने।

पगतना बहुत गरीब सी अनपढ़ भी गावां मझां चरांदा है भगत धरने बारे भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच इस तरह बयान किया है कि जदों इंसान सच्चे मनो उस परमेश्वर की भगती करता है उहदा नाम लैंदा है तां उह परमेश्वर किस तरह आके मिलता है जिवें धन्ने नूं मिलिया भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

के दही रिड़क के लस्सी बनाई, एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी लई ते ठाकुर दे सामने

ना ठाकुर रोटी खांदा है ते ना तन्ने ने रोटी खादी। अगला दिन भी लंघ गया, रात पै गई, ओ भी लंघ गई, तीसरा दिन चढ़ गया,

तीन दिन हो गए ने अरदासां करदे आ हाथ जोड़दे आ तू नहीं आया जे तेरी जिद है पढ़िया लिखिया दे हथों पंडतां दे हथों खाना ते मेरी भी फिर जिद है।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। सात संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब

परमेश्वर नू परतख हो के तन्ने दी रोटी खानी पई, छाए मो लावे ते तन्ने दी बनाई होई, ओ छाए लस्सी

परमेश्वर मिले ते ओ तन्ना हुण तिन्ना लोकां दा ज्ञाता हो गया। ठाकुर कहन लगे तन्या तू याद कीता मैं आ गया हुण दस तैनू चाहीदा की। उस वक्त तन्ने ने ए शब्द उचारिया कहन लगा गोपाल पहली गल ए

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ के

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम पातशाह कहिंदे हन।

गुर आराधना जेवा जप गुरु नाम नेत्री सतगुर पेखना मन तो गल शुरू की सारे शरीर नू इस रंगन च रंग लैण दी जाच बख्शिश की अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम सतगुर सेती रत्या दरगह पाई है ठा उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीओ सदा सुहेला कर ले जीओ नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिनसे सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म हथा नाल रब दे कम रब दे केड़े कम बंदे तो थोड़े पे हथा नाल ओ कम कर जेड़े करके तेरा भला हो जाए रब दे ही कम ने के तेरा भला हो जाए वाहगुरु दे ही कम ने तेरे गोचरे के तू जो जिस काम वास्ते तेनू हाथ बख्शिश किए गए ने तू ना हथा नू ओ कम करके सफले कर क्योंकि महाराज तो स्पष्ट कहें मन भुलेखे च रह जाए तेनू किस काम वास्ते केड़ा अंग मिले तेन भुलेखा ना रह जाए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कुछ जोत है इस करके धरी गई तेन सारे पासे वाहगुरु नजर आ ए सर्वनो मेरे हो साचे सुनने नू पठा ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए केड़े पासे लगी हर रस का तू चाख है साज चाखत होए रहे बिस्मार तेन स्वाद आ जावे वाहगुरु जपके तवे तेनू ए रस लैण वास्ते लाया ए स्वाद लैण वास्ते लाई सी स्वाद दी बिरती तेरे च भरी इस करके सी तू किसे पासे स्वाद लवे पर सिमरन विचो स्वाद मन करके तन करके गुरु का सिख गुरु नाल जुड़ जावे बहुत वड्डा है बहुत महान है असली पूरा प्रधान ओ है सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा गुरु की बात निरंकार दी गल पूरे ते प्रधान निवावे प्रभ मत्था प्रभु दे चरणा ते प्रभु दी दरगाह विच उसनू हाजर नाजर जान के जिन्हां दा मत्था चुकदा हर जस लिखे बेअंत सोहे से हथा चरण पुनीत पवित्र ओ बड़े पवित्र चरण ने चाले प्रभ पथा जेड़े प्रभु दे पंथ ते प्रभु दे मार्ग ते चल के जांदे गुरु के दर तक जेड़े लैके आउंदे बड़े पवित्र चरण ने

आस प्यासी सेजे आवा आगे से बा के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू

सारा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो सब जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवा चरण सर्व हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल मालक आरा दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

de gulture. Halt palt prav ab sare kar jore sare pure har naam jap tu sukh sade har naam jap tu sukh sade madhyan ho tu sadhu ture aun jaanu re tip pai जल मरण के मटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे